कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कदे कदे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरे मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, पैसे का लफड़ा जहाँ, ये तो दुनिया है व्यापार।

0: मंगल मनाए सीता वनवासिनी, मंगल मनाए फूलों के संग संग आंसू चढ़ाए, फूलों के संग संग आंसू चढ़ाए। सीता के मन में राम का ध्यान,
1: राम के मन में सीता का ध्यान,
2: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है, जलाई है।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा धाम ऐ घटा बरस जा ऐ पवन ओ झूम जा।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था घटा बरस जा।